0: 兵线里。
1: Let's go.मेरा नंबर डायरेक्टली बात करना, डैड को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ओके, वैसे भी नंबर मिल गया तो डेस्पो की तरह बिहेव मत करना. आई कैरी पेपर स्प्रे.
0: ओके.
1: बाय द वे,